0: लाइका गोल्ड वन परफॉर्मर
1: के सामने का प्रोसन से कहना क्या पहनी है तुमने साड़ी भाई या खिलाड़ी खिलाड़ी
2: काउंटलेस पर्सनालिटीज
3: जिंदगी बर्बाद हो गया
4: अ होल यूनिवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट
5: नंबर फंक्शन रखा हुआ
2: सुनील ग्रोवर लाइव यूके टूर 2026
4: 29th October ओवर अरेना वेम्बली लंदन 31st October मैटियोली अरेना लेस्टर
2: फ्रॉम गुत्ती टू डॉक्टर मशहूर गुलाटी फ्रॉम रिंकू भाभी टू ब्रांड न्यू सरप्राइजेस एक्सपीरियंस सुनील ग्रोवर लाइव ऑन स्टेज इन द यूके
4: प्रोड्यूस्ड बाय इमेजिनेक्स ग्लोबल एंड टिम्स मीडिया प्रोडक्शंस
2: सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग अवेयरनेस टिकट्स आर ऑन सेल नाउ वाया टिकटमास्टर इवेंटब्राइट एंड एएक्सएस
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कांटेक्ट 07585801801 ऑफिशियल रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क
6: लोकेश

0: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
2: ताजा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ.

0: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Jasmine.
1: Oh, terrible weather.
0: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
2: See ya, good luck with the interview.
1: Thank you, bye.
0: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
5: Packed for the trip? Gifts? Passport?
6: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
6: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
7: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
8: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
9: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

हुकमी उत्तम नीच हुकुम लिख दुख सुख पाइए एक ना हुकमी बख्शीस एक हुकमी सदा भवाइए हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कहे न कोए गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाइया चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जी लै फिर दे गावे को

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथस्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन हुए। जे को मन जाने मन कोए,

होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

करते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी हो।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पातशाह साहब नानक रहन जाई।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश दिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेश, एक दूजी बोला खोवें लख होवें लखवीस, लख लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगति छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापै जाए धर्म

0: breakfast with Deep Raja. बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड। रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड,
1: ये है लाइका गोल्ड। 10:35 AM.
2: Sorry, what was that? Some more music? Yeah, why not? Enjoy. Getting drinking tea to this, eh? चाय पी रहे हो? मुझे भी पिला दो। Good morning, Deep Raja here.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Deep Raja across the Leica Radio Network, making summer feel better on the Leica Radio Network.

0: Breakfast with Deep Raja. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
1: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
2: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
2: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन. इस दिसंबर ठंड को बोलो goodbye.
4: Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. Khoobsurat beaches, sunshine aur 8 amazing Caribbean islands aapka intezar kar rahe hain. Prices from just £1,499 per person, twin share. Seats limited hai, to aaj hi book kijiye. Visit maharajatours.co.uk or call 07956154846.
2: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
5: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
6: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
5: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
6: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
5: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
6: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
7: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
8: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
7: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
9: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holiday Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
0: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. Breakfast with Deep Raja.

0: Charger across the Leica Radio Network. Leica Extra Podcast Update.
1: Oh, yes, it's a very, very interesting one, because it's the British Asian Trust Showcase. Hiten Mehta, OBE and Chief Executive Officer or CEO of the British Asian Trust, talks about the organisation's work from its royal origins to major fundraising events. The story dives really into and behind the trust. We learn how the organizational work turns its ideas into lasting impacts and how it's reached 18.8 million people across South Asia. So look, don't delay. Get involved in that podcast today. It is episode 30. And it's hosted by, let me think, oh yes, that gentleman. His name is Deep Raja. Yes, I hosted that one. So please do look at that one. Do like it and do move it on and share it with others. Like a extra podcast available on Spotify, YouTube and Amazon and much more. So don't delay. Look at that podcast today.
0: Leica Extra is here. Leica Go.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
3: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट travelhubworld.com
4: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
5: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
6: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
7: Lights on, shutters up, staff ready.
6: But today's customers don't start on the high street.
7: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
6: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
7: They walk into your competitors.
6: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
8: Are we there yet?
1: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
8: Relax, I've booked the Uber already.
1: How? My roaming isn't even working yet.
8: I switched to Simzy before we left London.
1: Simzy? Since when are you the tech expert?
8: Since I decided I want a stress-free holiday.
9: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
10: T's and C's apply.
11: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉव के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
12: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com।
13: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
14: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक।
15: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
14: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th August हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th August वुडमैनस्टोन स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Breakfast with Deep Roger.

0: Breakfast with Deep Raja. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: You know, there's something about that song. Whenever you hear it, you just do not get tired of it. Isn't it a beautiful song? Okay, a pound in your pocket can get you 130.55 Indian rupees, 378.85 Pakistani rupees, not forgetting 449.39 Sri Lankan rupees and 1.36 US dollars.
0: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: And the Gold Rate's currently trading at 108.55.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets. One of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow, or Crowley.
1: Okay, I'll speak to you all right after the news. Good morning.
2: लाइका गोल्ड
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
4: श्री राम मंदिर किंग स्ट्रीट साउथ हॉल इनवाइट यू टू द श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के पावन सानिध्य में 30 अगस्त रविवार को 26वीं शोभा यात्रा सुबह 11:30 बजे से श्री राम मंदिर से आरंभ होगी जिसमें पूजन दर्शन भजन कीर्तन और प्रीति भोजन इसके अतिरिक्त 4 सितम्बर को शाम 8 बजे से भव्य सेलिब्रेशन एट द श्री राम टेम्पल 22 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल आप आइए और सबको लाइए
5: हेलो रे हेलो आज जन्माष्टमी कान्हा नारंगमा लंदन पड़ रंगा से स्टार्टअप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा भक्ति नासुर गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
6: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. Indian Idol fame Sugandha Date live in concert. Sunday the 6th of September at Damesha Lohana Center, London. Apni seats abhi book kijiye. For more information, call Ashwin on 07956-278-228. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
7: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
8: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
7: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
8: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
9: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
9: high appreciation.
10: In Dubai,
11: Maharaja Tours के साथ इस नवंबर explore कीजिए Singapore, Malaysia और Thailand, Sentosa Island, Batu Caves, Genting Highlands, Bangkok के floating markets और beautiful temples, फिर Pattaya और Coral Island का मजा, fantastical Far East from सिर्फ £2,799 per person, flights, 4-star hotels, Indian khana और amazing excursions, sub included. Visit maharajatours.co.uk or call 07956-154-846
12: खाखरा क्रंच भाखरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जैमिन फूड्स का वाइब चेक
13: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जैमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
12: जैमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
14: 40 मिलियन पीपल लिसन टू कमर्शियल रेडियो ईच वीक दैट्स 80 मिलियन इयर्स गिव अ टेक Amplify your advertising at radiocentre.org.
15: Sonatours.co.uk. 13 days Vietnam and Cambodia departures every month, September to December. Get 100 off if you book this month. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
16: Breakfast with Deep Rancher.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: स्टारडम मीडिया प्राउडली प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद द सोलफुल नंदलाल छांगा।
3: गोविंद बोलो हरि गोपाल।
4: कृष्णना जन्मनो आनंद उत्सव, एक अज रात एक अज अनुभव।
3: नंद घर आनंद भयो जय करे।
2: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or stardomedialtd.com.
4: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
6: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02030773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
8: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
9: पल भर के लिए
10: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज। इब्रॉक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर, फीचरिंग फहर यफ, अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा। गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए। संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर। टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25। बुक टिकट्स एट heroartcenter.com। बॉक्स ऑफिस का नंबर है 02030737761। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक Radio Network
11: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
12: हॉन्स्लो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
13: परंपरा भी
14: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो, TW3 1QT। कॉल करे 07487-687-885।
15: ब्रेकफास्ट विद डीप रांचा। Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: गुड मॉर्निंग, आइए बात करते हैं आज के मौसम की। और आज लंदन में धूप छांव वाला मौसम रहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री रहेगा। मैनचेस्टर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 21 डिग्री तक जाएगा और मिडलैंड्स में 22 डिग्री के आसपास रहेगा।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208-574-8410.
0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागतम। आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहाँ पर ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर है आपसे लेकर दोपहर के 1 बजे तक आपका साथ देने के लिए और हमेशा की तरह आपको सुनवाने के लिए ढेर सारे क्लासिक्स।
2: Like a gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
4: TravelHub.
3: At all protected.
2: Leica. Feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Leica Gold.

0: लीजिए दो आपके फेवरेट गीतों के साथ आज के द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है। आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहां कहीं भी पहुंच रही है मेरी आवाज, जहां भी कहीं हमारे साथी हमें सुन रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और उम्मीद है कल का दिन आपने बहुत ही अच्छा बिताया होगा और ईश्वर से प्रार्थना है कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा बीते। इस शो में आज 1 बजे तक आपके साथ रहूंगी और ऐसे ही आपके गाने, पसंद के कुछ मेरी पसंद के गीत प्रोग्राम में बजते रहेंगे। साथ ही साथ आज आप जोड़ी नंबर 1 सुनते हैं वो भी सुनवाऊंगी, 3 वर्ड्स गेम भी होगा और बजेंगे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स भी। बस आप मेरा साथ देते रहिए और आप दे रहे हैं, ये मुझे आपके मैसेजेस बता रहे हैं तो उन पर भी मेरी नजर जाएगी। लेकिन फिलहाल एक और गीत सुन लेते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 130 भारतीय रुपए और ये ट्रांसफर याद रखिए हमेशा की तरह आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग the Yono SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: माधुरी दीक्षित के गाना चाहे कोई भी हो, उसे देखने में मजा आता है क्योंकि जिस तरह से वो डांस करती हैं, ऐसा लगता है जैसे गाने में चार चांद लग जाते हैं। हम आपके हैं कौन फिल्म से था ये गाना जिसमें आवाज थी लता जी की, और अब मैं आपको उनकी छोटी बहना यानी कि आशा जी की आवाज में सुनवाने वाली हूँ अगला गाना।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai,

0: आती है। जब भी मुझे याद तुम्हारी आती है, लबों पे मेरे बस यही फरियाद आती है। जिंदगी में खुदा हर खुशी दे तुम्हें, हमारी तो हर खुशी आपकी खुशी के बाद आती है। क्या बात है, कहाँ से लाते हैं इतनी खूबसूरत लाइनें आप। थैंक यू बड़े ही प्यार से साथ देने के लिए। और आज तो आपने कहा है कि आज आप अपने फ्रेंड के पपी को लुक आफ्टर करने जा रहे हैं, जिसे आपने ट्रेन किया है एंड बहुत क्यूट है। आपने उसकी फ़ोटो भी भेजी है, जिसका नाम है मीशो। तो भाई क्या करें, मीशो को भी हेलो कह दें। एनीवेज आप उसके साथ अच्छा सा समय बिताइए, और आपने जो प्यारा सा मैसेज लिखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड आपके साथ साथ राजकुमार सुबह की प्यार भरी राम राम सभी को पहुंचा रहे हैं, तो आपको भी मेरी राम राम। थैंक यू संध्या भाव सर, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया इतनी जल्दी। अरे 10 बज गए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। रितु तू यहाँ बैठी है तो क्या हुआ, बाकी लोग तो घर में हैं। मज़े के साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। मैं भी सोच रही हूँ कि एक कप चाय पियाऊँ थोड़ी देर बाद जाके। लेकिन सुरेखा जी थैंक यू, आप हमारे साथ हैं और कहती हैं कुछ सुनाई नहीं देता, क्या हो गया। ओह रीस्टार्ट करके फिर से आप उसको शुरू कीजिए, ऐप को, कभी कभी हो जाता है सिग्नल की वजह से, है ना। हमारे साथ है तोची जी, सुनील कपूर जर्मनी में हमारे साथ है और कहते हैं कि गुड मॉर्निंग रितु जी, वेटिंग फॉर यू ऑन संडेज एंड ऑलवेज वॉन्ट टू लिसन ओनली यू। ओह क्या बात है, लवली, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू योगेंद्र जैन जी, सुप्रभात, स्वागत है आपका भी। वसंत राणा जी रेडिंग में हमें सुन रहे हैं। वियाना से अनिल सोनी जी हैं। मिसेस पेकी चियांग हमारे साथ हैं। क्रोइडन से महेंद्र पटेल जी हैं, थैंक यू। एंड ये कौन है जिन्होंने अपना नाम लिखा है क्या, नहीं लिखा, लो अरे हाँ इनका नाम मौसुमा जी है। स्वागत है मौसुमा जी आपका। बेल्जियम में प्रीति जी है, अर्जुन जी हमारे, शेखर आनंद जी हमारे साथ हैं, राजेश जी हमारे साथ हैं, थैंक यू। काम के साथ साथ आप हमें सुनते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। फारूक मोहम्मद जी, शुरू के दोनों गाने आपको पसंद आए, स्वागत है। सुनीति जी स्वागत है। टोरंटो से उल्लास हमारे साथ हैं। पटनी से निवेदनी जुड़ी हैं। शरफून हमारे साथ हैं, जो आजकल राखी की तैयारी में बिजी है। हाँ भाई, रक्षाबंधन आने वाला है, भाइयों को आपने राखी वाखी भिजवा दी कि नहीं। त्यौहार आने वाला है, सावन के महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। सो दिव्या हमारे साथ हैं, और भी बहुत सारे साथी हैं, रोशनी जी, मालती जी एंड ऑफ कोर्स हमारे गिरीश जी, जो कि भारत से हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए और बाकी के नाम लूंगी, लेकिन फिलहाल ये आशा जी की आवाज़ में गाना कह रहा है अब तो बजा दे रितु। चलिए सुनवाती हूँ ये गाना मेरी ओर से आप सबके नाम पर।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: ब्यूटीफुल गाना ओपी नैयर का म्यूजिक मनोज कुमार और शर्मिला टैगोर की फिल्म। और इस गाने को आपने सुना आपके मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क से, जहां इस समय आपके साथ है ऋतु शर्मा। गुड मॉर्निंग।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, मोर फ्लेवर्स मोर कन्वीनियंस मोर यम, ग्रैब योर कोका बोल टुडे।
0: और इसी जमाने की एक हीरोइन है जिनकी की आज है बर्थडे, बताइए जरा कौन है? नहीं पता? अरे वो पड़ोसन, आपके पड़ोसन नहीं, किशोर कुमार और सुनील दत्त की पड़ोसन। हाँ समझ गए ना, यस सायरा बानू की बात कर रही हूँ। आज सायरा बानू का बर्थडे है और आज वो 82 इयर्स की हो गई है। उनका एक गाना है जो हम अक्सर ही और लोगों के जन्मदिन पर बजाते हैं। अब क्योंकि आज उनका बर्थडे है तो सोचा उनका गाना क्यों ना उन्हीं के जन्मदिन पर बजाया जाए और आप सबको सुनवाया जाए।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
3: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Lyca Gold Greater London.

0: लता जी की आवाज में फिल्म आई मिलन की बेला का ये गाना डेडिकेट करते हैं उसी फिल्म की हीरोइन यानी कि सायरा बानो को, जो आज अपनी हैप्पी वाली बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। शी इज 82 टुडे। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है और जानते हैं सिर्फ 17 साल की उम्र में, जब सिर्फ 17 ईयर्स की थी तभी इन्होंने शम्मी कपूर के साथ जंगली फिल्म में डेब्यू किया था और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था और सबकी उस समय पहली पसंद बन गई थी क्योंकि जंगली फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। और उसके बाद तो इन्होंने कुछ बहुत ही यादगार फिल्मों में काम किया है, जैसे कि पड़ोसन, कौन भूल सकता है उस फिल्म को, पूरब और पश्चिम, मनोज कुमार की फिल्म बहुत बड़ी हिट थी, झुग्गी आसमान जिसमें राजेंद्र कुमार उनके साथ थे और जॉय मुखर्जी के साथ शागिर्द, वो है जरा खफा खफा, क्या पॉपुलर गाना है। कोशिश करूंगी कि कुछ और गाने उनकी फिल्मों के आपको सुनवा सकूं, लेकिन आज उनकी बर्थडे और हम सब जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक ही प्रण किया था कि मेरे को दिलीप कुमार से शादी करनी है। जब मैं उनके बारे में पढ़ रही थी तो उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी दिलीप कुमार से शादी हो जाए। बताइए, शादी करना उनकी ख्वाहिश थी और वो भी दिलीप कुमार से, और वो पूरी भी हुई। हालांकि दिलीप कुमार उनसे 22 साल बड़े थे, लेकिन न जाने क्या हुआ, शादी को वो भी तैयार हो गए और दोनों ने शादी रचाई और उन्होंने अंत समय तक दिलीप कुमार का बहुत ख्याल रखा। सो ये कमाल की जोड़ी रही है और आज सायरा बानो अपनी बर्थडे मना रही हैं, तो बिल्कुल उनको हैप्पी बर्थडे कह देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, सुनवाते हैं अगला गीत आपको।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel।
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दे कि हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो दुबई के लिए बहुत अच्छी डील चल रही है साउथहॉल ट्रैवल से, उन्हें फोन कीजिए 02085748410 पर। साउथहॉल ट्रैवल इज ए टोल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: This year at Amazon, we're increasing the electric vehicles used for deliveries across Europe to over 10,000. It's a difference you'll notice on your doorstep, where babies are made a fuss of, where we deliver footballs for kids' kickabouts, and where they deliver the football straight into next door's garden.
3: Can they have their ball back, please?
2: We're delivering change where it matters, on your doorstep. Based on projected delivery service partner vehicles across the UK and EU by end of 2026.
1: Riti Sharma on Leica Gold.
4: Us kids are mesmerised by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable
5: At all protected.
6: Visit travelhubworld.com.
7: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक।
8: तुम तो तेरे आशिक है सदियों पुरा।
7: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th August हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th August वुडमैनस्टोन स्कूल साउथ लंदन, डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन Call Deepa on 07947-561-947.
9: Dad.
10: What's wrong, beta?
9: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
10: I will run down to the money exchange now.
9: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
10: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
9: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
11: London walo dhyan se sun lo ke furniture ki dhamakedar flat
5: फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
11: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
12: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीसीएस अप्लाई।
13: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
14: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
13: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
1: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन।
15: There's a snail, and its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
16: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders, and you'll see a great deal too. So book them an appointment at Specsavers today for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
15: Conditions apply. See online for details.
17: ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ।
18: ਆਪਕਾ ਨਯਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਗਜ਼ਲਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹਾ ਹੈ।
1: ਰਿਤੂ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲਾਈਕਾ ਗੋਲਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੰਡਨ।

0: क्या खूबसूरत गीत गाया है लता जी और हरिहरन ने, और इस गाने को सुनकर हरिहरन जी से वो मुलाकात याद आ गई। और मैं यही कहूंगी कि क्या बढ़िया आदमी है, डाउन टू अर्थ इंसान है बिल्कुल। और उन्होंने मेरे लिए गाना भी गाया था, मेरा फेवरेट वाला, जिसका वीडियो भी मैंने अपने सोशल्स पर पोस्ट किया है।
1: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Like a Gold. Make it a date.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 130 भारतीय रुपए, 378 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टका।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LIKA Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 108.5 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Like a Gold. Part of the largest Asian commercial radio network in the UK.
1: Ye hai Like a Gold.
3: Like a Gold. Apnoko, apnoke, karibe.
4: Aapka apna Utsav Plus ab hai Star Plus. Utsav Gold hai Star Gold. Aur Utsav Bharat hai Star Bharat.
5: Shri Ram Mandir, King Street, South Hall invite you to the Shri Krishna Janmashtami Parv. Param Pujya Mahamandaleshwar Swami Gyananda Ji ke Pavan Saridhya mein 30 August Ravivar ko 26th Shobha Yatra subah 11:30 baje se Shri Ram Mandir se aarambh hogi, jisme pujan, darshan, bhajan, kirtan aur priti bhojan. Iske atirikt 4 September ko sham 8 baje se bhavya celebration at the Shri Ram Temple, 22 King Street, South Hall. Aap aaiye aur sabko laiye.
6: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: South Hall Travel, 7 days a week. South Hall Travel, 24 hours a day.
9: South Hall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
8: South Hall Travel.
9: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
8: South Hall Travel can take you there.
10: साफो ट्रैवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
11: सितंबर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
12: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
13: ए तमे स्त्री होमने छे ने पुरुषो नाम खोटा होगोवानो बंद करो।
11: कॉमेडी किंग निमेशा अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लेने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाईनी जानमा। हवे राइसली, पॉटर्स बार, इलफर्ड, साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकट्स अने वधु माहिती माटे आजे ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद रखो
14: पटेल भाई जानमा।
15: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holiday Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
16: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
17: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंड friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
18: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
19: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट. Sunday the 6th of September at the Mecha Lohana Center, London. Apni seats abhi book kijiye. For more information, call Ashwin on 07956-278-228. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
20: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
21: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
22: Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Leica Gold.

0: लीजिए, लता जी और रफी साहब की आवाज में ये गाना आप में से कितने साथियों का फेवरेट है ये आपके मैसेजेस बता रहे हैं। थैंक यू दिव्या जी कहती हैं, थैंक यू रितु फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग। चलिए मैंने ये आपको डेडिकेट किया और आपके साथ। मालती जी थैंक यू, सलमा जी, संध्या भाव सर थैंक यू, गुरुदेव गांजा थैंक यू कहते हैं कभी अलविदा ना कहना। अब देखिए क्या कह सकते हैं, समय का जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन जब तक साथ है जब तक है। और यही कहना हमारे गिरीश जी का है कि हम तो चाहते हैं कि आप कभी अलविदा ना कहें, और मैं यही कहूँगी कि समय, जीवन और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कुछ भरोसा नहीं होता। जब तक साथ है जब तक इंजॉय कीजिए। थैंक यू आप सभी के इस प्यार पर के लिए, इस मैसेजेस के लिए। वीरेंद्र चौधरी जी आप बताते हैं कि आपने कल बड़े ही धूमधाम से आज़ादी दिवस का समारोह मनाया और मुझे मिस किया, तो मुझे बताना चाहिए था ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। चलिए आपने मिस किया, कोई बात नहीं, आपने तो इंजॉय किया ना, और आपने फ़ोटो भी शेयर किए हैं, बहुत बढ़िया फ़ोटो हैं, लग रहा है कि आपने खूब अच्छे से इंजॉय किया है। थैंक यू दिव्या आपके मैसेज के लिए। ओके पर मैंने तो अनाउंस कर दिया, कहती है अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है रितु, पर मैंने तो कर दिया, आप कोई बात नहीं वापस तो नहीं ले सकती। थैंक यू। एंड इसके अलावा हिमा हमारे साथ हैं, हरीश खत्री जी चलते चलते आपका फेवरेट गाना है, चलिए आपको हमने डेडिकेट किया। नरेंद्र पाठक जी धन्यवाद, जैस्मीन स्वागत है। एंड सुरजीत जी कहते हैं कि रितु मैंने तो जिम स्टार्ट किया है, अब सैटरडे संडे आज से 11 मैं जिम करूंगा, तो आपको 11 बजे के बाद सुन पाऊंगा। ये अच्छी बात तो नहीं है सुरजीत जी कि आप 8 से 11 जिम ज्वाइन किए, आप 7 से 10 भी तो कर सकते थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि सेहत फर्स्ट, बाकी चीज़ें चलती रहती हैं, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। और चलिए कोई बात नहीं, 11 बजे ही हमें हमारे साथ जुड़ जाइए, इसी में काम चलाएंगे, और क्या कह सकती हूँ। थैंक यू जयवंत गोर्धन दास आप हमारे साथ हैं, थैंक यू आंटी जी। एंड ऑफ कोर्स हमारे नरेंद्र बागिया जी स्वागत है आपका, ज्योति पटेल, विनोद जी, महेंद्र बजारिया जी, हमारी भारती जी, एस एस भोगल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के मैसेजेस मिल गए हैं। और ये हैं, मैं आपका नाम ज़रूर पढ़ूंगी, आपने समीना हो, क्या बात है, छोटा सा नाम लिखा है, मैनचेस्टर में हमारा साथ दे रही है। तो चलिए थोड़ी देर में शुरू करते हैं आज की जोड़ी नंबर वन का सिलसिला, और आप जानते हैं ना आज की हमारी जोड़ी कौन सी है, यस हेमा मालिनी और धर्मेंद्र दी जोड़ी। सुनवाती हूँ पहला गाना आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 130 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है लाइका गोल्ड, आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: ये तो था बंदिश फिल्म से गाना। दरअसल मेरी जोड़ी राजेश खन्ना और हेमा मालिनी है और मैंने धर्मेंद्र का नाम ले दिया। मैं भी सोच में पड़ गई कि धर्मेंद्र ने इस फिल्म में कहाँ से काम किया था। तो बेसिकली हमारी जोड़ी आज राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की है, जिनकी फिल्म से लिया था मैंने ये गाना। और ये फिल्म मैंने देखी है। इस फिल्म में डैनी का बहुत ही ख़राब रोल है, मतलब वो विलन बने और ऐसे खूंखार विलन बने हैं कि मुझे उनका रोल इस फिल्म में उनसे नफरत हो गई थी। और ये एक कलाकार की कलाकारी है कि वो इतना अच्छा कैरेक्टर निभाए कि आप उसमें बिल्कुल खो ही जाए। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। इनफैक्ट ये गाना आप सबने पसंद किया है, सो थैंक यू। और ये थी हमारी जोड़ी नंबर वन का पहला गाना। सत्यनारायण सैनी जी, आपने एक गाना याद दिलाया है जो फिलहाल तो हमारे सिस्टम में है नहीं, लेकिन ज़रूर उसे सिस्टम में डालेंगे और फिर हम आपको सुनवाएंगे।
1: Brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
0: तो चलिए अब सुनवाते हैं आज की जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना।
1: हेलो हेलो हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो वेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM, लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियम मिडलैंड्स।

0: यस, कुदरत फिल्म से लिया था ये गाना, जिसमें आरडी बर्मन का म्यूजिक था और आरडी बर्मन ने बहुत सारे गाने बनाए हैं और आई थिंक ये उनके जो बेस्ट कंपोजिशंस हैं उनमें से एक है ये गाना, जिससे कुदरत फिल्म से लिया था। और हमारे एसएस भोगल जी कहते हैं कि मेरा बहुत फेवरेट वाला गाना है, थैंक यू आपने इसे प्ले किया, और यही कहना हमारे अमर जी का है, कहते हैं ये गाना बजाकर तो आपने मेरा दिन ही बना दिया। भारती जी का भी यही कहना है। तो चलिए, जिनका भी ये फेवरेट गाना है, हमने ये गाना उन सभी के नाम पर किया। और ये थी आज की जोड़ी नंबर वन, जिसमें राजेश खन्ना थे और साथ में थी हेमा मालिनी।
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma. Like a extra podcast update.
0: और अब आपको बता दें, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट के बारे में उसका नया एपिसोड आ चुका है और इस बार का टाइटल है ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट शोकेस। इसे होस्ट किया है दीप राजा ने। और हमेशा की तरह हम आपको याद दिलाएंगे कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
5: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: One performer,
7: countless personalities,
6: a whole universe of entertainment.
7: Sunil Grover live UK tour 2026.
6: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
7: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises.
6: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
7: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
6: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
8: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
8: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
9: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Dad.
11: What's wrong, beta?
10: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
11: I will run down to the money exchange now.
10: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
11: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
12: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
13: 073-00-9988-23 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823।
14: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
15: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 0208150205 और विजिट meraboiler.com। टीसीसी सप्लाई।
16: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
17: परंपरा भी फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फोर्ड, IG26HA। कॉल 07555-506015।
18: लाइक अ रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रगासन।
19: On this week's Leica Extra podcast, Deep Raja talks to Hitan Mehta OBE, Chief Executive of British Asian Trust.
20: British Asian Trust, what does the organisation do?
21: The British Asian Trust was started by His Majesty the King when he was Prince of Wales, Prince Charles, to support disadvantaged people right across South Asia. And so far, we've been able to help 18.8.
19: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.

0: आग और शोला फिल्म से था ये गाना, जिसमें जितेंद्र और श्रीदेवी ने काम किया था। और ये 80s की फिल्म थी जिसमें बड़े अच्छे अच्छे गाने बने थे जिन्हें हम आपको सुनवाते रहते हैं। और उस जमाने में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, विनोद खन्ना, ये सब 80s में थे और जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है। लेकिन फिलहाल मैं बात करने वाली हूँ KBC के बारे में। लेकिन उससे पहले SS भोगल जी, ये गाना आपको अच्छा लगा, हमने आपको नाम के नाम किया, और हमारी ये कौन लिसनर हैं जिनका नाम क्या है, आपने नाम कहाँ लिखा है? कहती हैं ये तो जितेंद्र और श्रीदेवी का गाना है। हाँ, तो जोड़ी नंबर वन तो ख़त्म हो गई है ना, उसके तो मैं सिर्फ दो ही गाने सुनवाती हूँ। थैंक यू। लेकिन हाँ, आजकल मैं KBC देखती हूँ नया जो शुरू हुआ है, और अभी 2 दिन पहले शायद जो एपिसोड आया था, आई डोंट नो किस दिन आया था, जिसमें रुचिता आई थी, वो एपिसोड मेरे दिल को छू गया। उस बच्ची ने, उस लड़की ने कितनी खूबसूरती से खेला और 50 लाख जीत कर गई वो। आपने देखा है क्या वो एपिसोड? देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हमें लगता ही नहीं कि हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं, जब उसकी बातें सुनी तो लगा कि एक छोटा सा बिस्तर सोने के लिए, जिसको हम गिनते भी नहीं हैं कि ये हमारी सुख सुविधाओं में आता है, जब उससे उसकी बातें सुनी तो समझ आया कि वो जीवन में आज तक कभी बेड पर नहीं सोई है। अमिताभ बच्चन भी बहुत भावुक हो गए थे उसको सुनकर, और मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख लगा सुनकर कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आज तक अनुभव नहीं किया है। अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आता है इस शो को देखकर। कल प्रसून जोशी आए थे, कल नहीं शायद, वो किसी और दिन आए थे, अभी 2-3 दिन पहले, और उनका शो भी बहुत अच्छा था। उन्होंने हिंदी के ऊपर कितनी खूबसूरती से बोला है कि आजकल लोग हिंदी जब बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी दूसरी भाषाओं के शब्द मिला देते हैं, जैसे कि इंग्लिश के तो बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में मिले रहते हैं, और इस तरह से वो शब्द जो इंग्लिश भाषा में हम बोलते हैं, उनकी जगह जो हिंदी के शब्द आने चाहिए, उन्हें लोग बाग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई है, तो हिंदी बहुत सिकुड़ गई है, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कभी यूज़ ही नहीं होते। और उन्होंने यही कहा कि जब आप हिंदी बोलें तो सारे शब्द हिंदी में बोलें, और उन शब्दों का अवश्य प्रयोग करें जो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, जिन्हें हम भूल गए हैं कि इनका मतलब ये होता है, और वो काफ़ी प्रचलित थे पहले ज़माने में, लेकिन आजकल लोगों ने नहीं बोलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब हिंदी बोलें तो सिर्फ हिंदी ही बोलें, उसमें किसी और भाषा का मिलावट, भाषा की मिलावट ना करें। बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी बातें सुनकर, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा हो तो देखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं उसके बारे में बताने के लिए, लेकिन फिलहाल समय हो रहा है कि मैं आपको एक और गीत सुनवाऊँ, और इस बार आवाज़ है मुकेश जी की, और साथ दे रही है वाणी जयराम।
1: लाइका गोल्ड, आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
3: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
2: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
3: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
2: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
3: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
2: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
3: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं, तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 0208574 8410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
1: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
1: high appreciation,
2: in Dubai.
3: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
4: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
4: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: नोक झोक, सीक्रेट्स, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें, दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार। सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी, जहां है खाखरा, नमकीन, भाखरी, चिक्की, सोन पापड़ी, पिकल्स और बहुत कुछ।
6: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू। जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।
7: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
8: Asian Achievers Awards. Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
9: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Leica Gold Greater London. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: का गाना है वन ऑफ माय फेवरेट्स और मेरे साथ साथ बहुत सारे साथियों का ये गाना फेवरेट है, ग्रीशी एंड गुरुदेव गांजा, मालती जी, वत्सला जी, आप में से बहुत सारे साथियों का कहना है कि ये गाना हमारे नाम कीजिए। चलिए बैक टू बैक दोनों गाने आप सबके नाम पर गए और ये है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर जो 1 बजे तक चलेगा और इस आवर में कुछ ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स के साथ साथ हम खेलेंगे 3 वर्ड्स गेम भी। और आज के 3 वर्ड्स कौन से हैं मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे भाषा की शुद्धता की। और आपके ढेरों मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे साथियों ने अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर किए हैं और आप सब ने बिल्कुल सही लिखा है। आजकल हमारी भाषा इतनी मिक्स हो गई है और उसमें अलग अलग भाषाओं के इतने सारे शब्द मिल गए हैं कि हम भूल गए हैं कि असली भाषा कौन सी है। गुरुदेव कहते हैं कि हमारी पंजाबी का भी यही हाल है, उसमें भी बहुत सारे भाषा के शब्द मिले हुए हैं और आजकल लोग उसे ही बोलते हैं। सेम हाल हिंदी का भी है और बाकी भाषाओं को मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल यही। और हम कई बार अपनी भाषा में इंग्लिश के जो शब्द हैं उनका इतना प्रयोग करते हैं कि हम भूल गए हैं कि उस जगह पर कौन सा हिंदी का शब्द आता था, वो अब गायब ही हो गया है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आपको शुद्ध भाषा सुननी है तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत शुद्ध बोलते हैं। हमारे विजय गुनोबा जी हैं जो हमेशा मुझे मैसेज लिखते हैं और बहुत ही अच्छी हिंदी में। इसके अलावा राजेश जी हैं, वत्सला जी और भी बहुत सारे साथी हैं और उनकी हिंदी पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। इसके अलावा जब मैं हमारे योगी जी को सुनती हूँ, अमित शाह को सुनती हूँ, सुधांशु त्रिवेदी को सुनती हूँ, कुमार विश्वास को सुनती हूँ, आशुतोष राणा को सुनती हूँ और ऐसे बहुत सारे अनेकों नाम हैं जो जब बोलते हैं तो मुझे भी लगता है कि अरे कितनी सुंदर भाषा बोल रहे हैं। और मेरी भाषा भी सच में बहुत ख़राब हो गई है, बहुत मिक्सअप हो गई है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि कोशिश कीजिए और वो शब्द है ना जिन्हें हम बोलते नहीं हैं उन्हें बस याद रखिए, उन्हें कभी कभार बोलिए ताकि वो भूल ना जाए। और अगर आप भूल जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को वो आप पास ऑन कैसे करेंगे और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये भी कोई शब्द था हमारी भाषा में। प्राउड के साथ अपनी भाषा बोलिए और शुद्ध बोलिए। चलिए बढ़ जाते हैं इसी नोट के साथ आगे और आपको बता देती हूँ आज के 3 वर्ड्स कौन से हैं। तैयार हैं आप? चलिए फिर, ये 3 वर्ड्स हमेशा ही मैं बॉलीवुड के गाने से लेती हूँ और आपको गाना पहचानना होता है। पहला वर्ड है बोलेंगे, दूसरा वर्ड है बात और तीसरा वर्ड है देखो। बहुत सुंदर गाना है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। बोलेंगे, बात, देखो, 1963 में आई थी ये फिल्म। एसडी बर्मन का म्यूज़िक है और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। कौन सा गाना है सोचिए सोचिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और अगर जवाब पता है तो भेज दीजिए अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
0: So I repeat once again, पहला वर्ड है बोलेंगे, दूसरा वर्ड है बात और तीसरा वर्ड है देखो। कौन सा है ये गाना?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज ये 1 pound आपको देगा 130 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग दी योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Amazon offers term time working to their employees, like Anton, who's home to look after his daughters during their holidays.
3: Hello!
2: To him, this is the best sound in the world. Actually, maybe that's the best sound of all. Now that's term time working. Offered at Amazon. 10 weeks off guaranteed per year. Mix of paid holiday and unpaid time off. Conditions apply.
4: Ye hai. Like a gold. Like a gold.
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
6: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड
6: विजिट travelhubworld.com

0: मेरी नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन, इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
2: फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
2: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000।
3: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757। Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai।
4: Maharaja Tours के साथ नेपाल और भूटान की आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए, अपना सुकून ढूंढिए। हिमालय की खूबसूरत वादियों, प्राचीन मोनेस्ट्रीज, रंग बिरंगी संस्कृति और यादगार अनुभवों का मजा लीजिए। सुकून, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम आपका इंतजार कर रहा है। आज ही महाराजा टूर्स के साथ अपनी नेपाल और भूटान यात्रा बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
5: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax, I've booked the Uber already.
6: How? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.
10: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
11: No more worries for me or you.
12: Southall Travel, at all protected.
13: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
14: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
13: Jaimin Foods Mango Pulp, available now.
15: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
16: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: फिल्म के सारे के सारे गाने साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं और इस फिल्म का एक गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जिसके लिए उन्हें बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड भी मिला था। साहिर लुधियानवी ही हैं हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक, इसलिए उनका लिखा हुआ ये गाना जो काफ़ी दिन से नहीं बजा था आज प्रोग्राम में शामिल किया और आपने इसे पसंद भी किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए
1: ये है लाइका गोल्ड।
0: अब शुरू कर देते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स का सिलसिला। आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं क्योंकि हमारा 3 वर्स गेम चल रहा है और एक आध को छोड़कर ज़्यादातर सबने गाने को सही पहचान लिया है। तो गाना कौन सा है और किन्होंने सही पहचाना है मैं बताऊंगी, लेकिन पहले सुनवाऊंगी आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना।
2: Feel good track, brought to you by Derry Valley.
3: Soft and tender, like grandma.

0: यस, बहुत ही खूबसूरत गाना। हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना, फिल्म का नाम काला बाजार, और इस गाने को डेडिकेट करते हैं हमारी तोशी जी के नाम पर, और साथ ही साथ विजय गुडूरी जी जो कि सटन में प्रोग्राम सुन रहे हैं, और उसके अलावा जिन साथियों को ये गीत अच्छा लगा है, आप सबके नाम पर जाता है। ये था आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Ritu Sharma.

0: और आगे बढ़ने से पहले, अगला गीत सुनवाने से पहले मैं आपको याद दिलाती चलूं कि भाई हम सभी के फेवरेट सुनील ग्रोवर लंदन आ रहे हैं। जी हाँ, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के साथ जो हमें खूब हंसाते हैं, सुनील ग्रोवर लंदन में लाइव परफॉर्म करने वाले हैं एट ओवो अरीना वैमली में ऑन थर्सडे 29 अक्टूबर एंड लेस्टर एट मेटियोली अरीना ऑन सैटरडे 31 अक्टूबर। टिकट्स अवेलेबल हैं AXS पर, इवेंट ब्राइट एंड टिकट मास्टर पर, और इस शो के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: रिची शर्मा ऑन लाइका गोल्ड।
2: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: अब्दुल्ला दीवाना। जी हाँ, ये तो कहावत है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और देखिए इस कहावत पर हसरत जयपुरी ने कितना सुंदर गाना लिखा है जिसे आपने अभी सुना, और फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। राज कपूर और पद्मिनी की एक सुपर टूपर हिट फिल्म जिसमें म्यूजिक था शंकर जयकिशन का, और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना जिसे आप सबने पसंद किया है। और अब आपको बताती चलूं कि हमारे कौन साथी हैं जिन्होंने सही सही गीत को पहचान लिया है, आज के थ्री वर्ड्स वाले गाने को सही सही पहचान लिया है। तो उनके नाम हैं महेंद्र बजारिया जी, दामिनी बेन, उल्लास, दिनेश पोपट जी, मनीषा शाह, रोशनी जी, सरोज जोशी, मीना शाह, नरेन पटेल, वसला कुकी, गीता हर्ष जोशी, अमित पटेल, दिव्या हैरोसे, विजय गुडोरी जी, स्मृति कैंट से, हाजरा जी एंड हमारी तोची जी। आप सभी ने गाने को सही सही पहचाना है, और बाकी जिनके नाम मैंने नहीं लिए हैं वो शायद गाने को आज नहीं पहचान पाए हैं। तो फिकर नॉट, अभी थोड़ी ही देर में मैं बजाने वाली हूँ कि वो गाना कौन सा है। बड़ा ही पॉपुलर गाना है, लेकिन उस गाने को बजाने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथ ऑल ट्रैवल को कांटेक्ट कीजिए। उनके पास बड़ी ही कॉम्पिटिटिव हॉलीडे डील्स हैं दुबई के लिए। फ़ोन कीजिए उन्हें 0208-574-8410 पर, एंड साउथ ऑल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: At Amazon, over 50% of deliveries now come with less packaging or with no added packaging at all. It's a difference you'll notice on your doorstep. Where you chat with friends, where your neighbor's daughter practices guitar, and where we deliver your new noise-cancelling headphones in the manufacturer's packaging. Ah, much better. Reduced packaging from Amazon. We're delivering change where it matters. On your doorstep. Based on 2025 Amazon packaging data across the UK and EU.
3: Ye hai Leica Gold. 10:35 AM.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from HeraldPlastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
8: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
9: Visit mantraholidays.co.uk or call 0203 773 633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel, prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
13: हौसलो अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास
14: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी
15: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हौसलो TW3 1QT कॉल करें 07487687885

0: साथ सॉफ्ट लॉस अब है स्टॉप लॉस।
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: मेरी ओर से भी बाय बाय बाय बाय। अब हम कल तो नहीं, हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, लेकिन इस शो में मेरे बाद अनुराग होंगे लाइका गोल पर, मैनचेस्टर पर लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर होंगे जय, एंड लाइका रेडियो मिटेंस पर होंगी आनंदी। आप बहुत सारा ख्याल रखिए अपना, सुबह से लेके अब तक मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो सो मच। और अब नेक्स्ट वीक तक के लिए आपको छोड़ के जा रही हूँ, अगला गीत सुनिए, उसके बाद न्यूज़ आएगी और मैं आपसे कहती हूँ बाय बाय।
1: ये है लाइका गोल्ड, आपका अपना उत्सव प्लस, अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंडन पड़ रंगा से। स्टार मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा। भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन, ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Watford mein dinner plans. Thoda classy, thoda desi.
4: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
3: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak. Fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
4: Friends, family, yes. स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे। श्री राम मंदिर किंग स्ट्रीट साउथ हॉल इनवाइट यू टू द श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के पावन सानिध्य में 30 अगस्त रविवार को 26वीं शोभा यात्रा सुबह 11:30 बजे से श्री राम मंदिर से आरंभ होगी, जिसमें पूजन दर्शन भजन कीर्तन और भोजन। इसके अतिरिक्त 4 सितंबर को शाम 8 बजे से भव्य सेलिब्रेशन एट द श्री राम टेम्पल 22 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल। आप आइए और सबको लाइए।
5: Celebrate Krishna Janmashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742045154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
6: सप्टेम्बर મહિનામાં હાસ્યનો ડબલ ધમાકો ફરી આવી રહ્યો છે।
7: તમે બધા પુરુષો તો લગ્ને કુવારા હો છો,
8: એ તમે સ્ત્રીઓ અમને છે કે પુરુષો નામ ખોટા ઓગવવાનું બંધ કરો।
6: કોમેડી કિંગ નિમેશ શાહ અને ક્વીન ઓફ કોમેડી મલ્લિકા શાહ લઈને આવી રહ્યા છે સુપર હિટ ગુજરાતી નાટક હાલો પટેલ ભાઈની જાનમાં, હવે રાઇસલી, પોટર્સ બાર, ઇલફર્ડ, સાઉથ લંડન અને લ્યુટનમાં। ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 07931534270। નાટકનું નામ યાદ રાખજો।
9: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for 4 people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
10: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holiday Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
11: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com।
1: अप नेक्स्ट गोल्डन रॉक विद अनुराग ऑन Leica Gold. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: लता जी ने अपनी खूबसूरत आवाज में जितनी भी बातें साथ से जुड़ी हुई कही, ये समझ लीजिए ऐसा ही साथ है हमारा और आपका। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आपके संदेशों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रितु शर्मा जी का जो इससे पहले हॉट सीट पर थी। आप फिल्म प्यासा सावन का ये गीत सुन रहे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने इस फिल्म का संगीत दिया था और फिल्म में नजर आए थे जितेंद्र साहब, जंपिंग जैक जिन्हें कहा जाता है, और उन्होंने एक नहीं बल्कि डबल रोल इस फिल्म में निभाए थे बाप बेटे के। इसके अलावा मौसमी चटर्जी ने ग्लैमर का तड़का लगाया था लेकिन बड़ी सादगी के साथ में। अगर जीतू साहब की करियर की बात की जाए तो 70 और 80 यानी कि 70s और 80s के दशक में बॉलीवुड के जंपिंग जैक कहे जाने वाले जितेंद्र साहब साउथ की खासतौर पर बेस्ड फिल्मों के रीमेक जो हिंदी फिल्मों में बनाए जाते थे उसके सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी चेहरे हुआ करते थे और उन्हें प्रोड्यूसर डायरेक्टर साउथ की फिल्मों के रीमेक के लिए आंख बंद करके भी साइन कर लिया करते थे। लेकिन जब फिल्म प्यासा सावन आई तो जंपिंग जैक ने ये सिर्फ साबित नहीं किया कि भाई मुझे सिर्फ जंप ही करना आता है यानी कि सिर्फ डांस करना आता है, एक सधा हुआ इमोशनल ट्रेजेडी से भरा हुआ किरदार भी वो बड़ी ही आसानी के साथ निभा सकते हैं और इस फिल्म में उनके अभिनय से ये बात पूरी तरह से साबित भी हुई। तो चलिए इस तरह के छोटे छोटे किस्से कहानियाँ आपके साथ शेयर करते रहेंगे क्योंकि आज सुपर संडे वाली महफिल है तो आपको मिलेगा सुरों का डबल डोज। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत आपके लिए किशोर दा और लता जी की आवाज में, नटखट सा प्यारा सा गीत।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले आपको मिल रहे हैं इंडियन करेंसी में 130 रुपीस। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Toothpaste ordered and arriving today with Amazon Prime. Phew, now that's off your mind, you can think about something else. Like the actual age of your toothbrush. Is it a few weeks? A month? A year? It could be a year. Oh, better get a new one. Maybe two. Same day delivery. It's on Prime. Geographic restrictions, cut-off times and T's and C's apply. Details on product page.
3: This is Like a Gold.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
6: साफो ट्रेवल at all protected.
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
9: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
10: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
11: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
12: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. अभी कॉल करें 0208150205 और विजिट meraboiler.com. टीएनसी सप्लाई.
13: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on diwalistory.com.
14: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208767 7627.
15: सोना ट्यूर्स डॉट को डॉट यू के स्पेशल ऑफर जापान चेरी ब्लॉसम टूर इन मार्च एंड अप्रैल 2027. बुक बिफोर द एंड ऑफ ऑगस्ट एंड गेट अप टू 400 ऑफ. कॉल सोना ट्यूर्स नाउ ऑन 0208951011.
16: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर. Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: चले।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: भाई प्यार की शुरुआत हो और जरा सी भी नजाकत ना नजर आए, छेड़छाड़ ना नजर आए तो फिर मजा नहीं आता। अभी प्यार वाली जिंदगी में थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर चाहिए चाहिए। अगला गीत मुकेश साहब और कंचन जी की आवाज में, थोड़ा सा नटखट, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने अभी ज्वेल थीप का ये गाना सुना।
1: On Rock with Golden Rock.

0: वकील साहब और कंचन जी की आवाज में बड़ी मासूमियत के साथ कहा है इस लाइन को, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि ये जिंदगी का मूल मंत्र मान लीजिए। जब भी आप सुबह उठें, अपनी बेटर हाफ से नजरें मिले, तो बस इतना ही कह दीजिए, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, पूरा दिन एकदम, क्या बोलते हैं ना मुंबई वाली लैंग्वेज में, मस्का। अगला गाना लता जी और अमित कुमार साहब की आवाज में, सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल।
1: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे।

0: आशाताई किशोरदा की आवाज में अल्टीमेट ये सॉन्ग जवानी दीवानी फिल्म से आप सुन रहे थे। और याद रखिए, दिमाग की बत्ती जलाने का आ गया है मौका, क्योंकि अगले गाने के बाद, सॉन्ग के बाद हम आपको बताएंगे, आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड। तैयार हो जाइए दिमाग की बत्ती जलाने के लिए।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 130 रुपीस एंड 54 पैसे, पाकिस्तानी रुपीस 378.86, श्रीलंकन रुपीस 449, बांग्लादेशी टका 166.89, अफगान अफगानी 88.31 and 1 US dollar 1.36.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £108.55 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Non-stop classics. Like a gold.

0: रफी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाजों में ब्रह्मचारी फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत। शंकर जयकिशन साहब ने इस फिल्म का संगीत दिया था। शम्मी कपूर और राजश्री इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए थे। कमाल की फिल्म, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़े झंडे गाड़े थे भाई। बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड भी इस फिल्म की झोली में आकर गिरा था। एनीवेज, दिमाग की बत्ती जलाने का आ गया है वक्त। आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड है, ध्यान से सुनिए, साथ या फिर साथिया। साथ साथिया, दो चीजें। अपनी फरमाइश का पिटारा कंगालिए और हम तक पहुंचाइए साथ और साथिया से रिलेटेड अपनी पसंद कनक में।
1: ये है लाइका गोल्ड, आपका अपना उत्सव प्लस, अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 Our line.
3: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
4: कृष्णा जन्मनो आनंद उत्सव, एक अज रात एक अज अनुभव।
3: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or StardomMediaLTD.com.
4: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
5: high appreciation,
6: in Dubai.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208-8839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन। लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
5: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक।
8: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
5: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th August हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th August वुडमिंस्टर्न स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
9: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
10: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
11: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
10: Jaimin Foods desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
12: On Rug with Golden Rug.

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: प्यार का मौसम
0: बेशरम।

0: एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा ताई की आवाजों में एक दूजे के लिए फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत रति अग्निहोत्री और कमल हसन साहब की ये डेब्यू फिल्म थी। और ये गीत हम तक पहुंचाया हंसा वोरा जी, कामिनी जी और सुमित जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। ये पहला गाना हमने आपको गोल्डन राग की सुपर संडे वाली महफिल की तरफ से सुनाया। साथ साथ ही साथ ये है आज का गोल्डन वर्ड। दिमाग की बत्ती जल चुकी है और बहुत सारे गीत हम तक पहुंच चुके हैं। बस अब विंडो को आराम करने दीजिए, यानी कि व्हाट्सएप विंडो को आराम करने दीजिए और गानों का आनंद लीजिए, क्योंकि आज मिलेगा आपको शुरू का डबल डोज।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज एक पाउंड के बदले आपको मिल रहा है इंडियन करेंसी में 130 रुपीस। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: From the first time they lose a
3: baby tooth, look, Mom.
2: To the countless times they forget to mention their
4: ingredients for food tech tomorrow.
2: To the last time you hear that school was
5: yeah, all right.
2: Kids grow up fast. Luckily at Tesco, we have back-to-school uniform that grows with them, including everything they need like trousers and skirts with adjustable hems and waists. So you can focus less on the cost and more on all this. Tesco, every little helps. Available in the majority of larger stores and online.
6: Ye hai Like a Gold, 10:35 AM.
7: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
8: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance with the legendary Anup Chalota.
9: Jaam chalne lage, dil machalne lage.
8: On Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Hosted by Anisa Nasir. Tayyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
10: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
11: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
10: Southall Travel.
11: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
10: Southall Travel can take you there.
12: Southall Travel, at all protected.
13: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
14: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
13: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
14: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
13: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
14: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
15: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
16: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
15: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
16: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट। कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे। इस दिसंबर ठंड को बोलो गुडबाय।
14: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबाडोस। खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन, ट्विन शेयर। सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
5: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
17: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
17: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
17: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
5: high appreciation.
17: In Dubai.
18: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. TNC supply.
19: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and likeagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ravi saab, Lata ji ki awaaz mein lalkar film ka ye khoobsurat sa geet hum tak pahunchaya tha. Nimmi Johra ji, Sandhya Bhavsar ji aur Anjali ji ne bahut bahut shukriya aap teeno hi trimurtiyon ka. और इस फिल्म का संगीत था कल्याण जी आनंद जी की तरफ से. फिल्म में नजर आए थे धर्म बाजी, चुबली कुमार, राजेंद्र कुमार साहब, माला सिन्हा मुख्य किरदारों में. अगला गीत मुकेश साहब और हेमलता जी के आवाजों में, जिसका है अपनी अपनी हाजिरी लगाएं व्हाट्सएप के विंडो पर.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: मुकेश साहब और हेमलता जी की आवाज में विश्वास फिल्म का ये गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, और ये गीत हम तक पहुंचाया है सपना जी एक्सप्रेस से मंजीत जी और राजू पटेल साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।

0: लता जी और रफी साहब की आवाज में आया सावन झूमके। 1969 में ये सावन आया था, आज तक आया हुआ है और ये कमाल का गीत हम तक पहुंचाया है उल्ला जी और दिव्या जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। अगला गीत आने से पहले कुछ आपको समझा देते हैं, बता देते हैं आपके फायदे की बात।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ हॉल ट्रैवल।
0: साउथ हॉल ट्रैवल के जरिए आपको मिल सकते हैं बहुत ही अच्छे रेट्स, कॉम्पिटिटिव हॉलीडे दुबई डील्स। और इसके लिए आपको कॉल करना है साउथ हॉल ट्रैवल को, नंबर है 0208574 8410। साउथ हॉल ट्रैवल इज अटॉल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Gold.
1: Leica Extra Podcast.

0: सब क्लास अब है स्टॉप क्लास।
1: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिज, है ना?
2: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
1: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड पोटैटो चिप्स नाउ।
3: फ्रॉम ब्रेथटेकिंग वेडिंग ज्वेलरी टू द फाइनेस्ट डायमंड रिंग्स, डू कम इन एंड सी अस एट मीनार ज्वेलर्स टू क्रिएट द परफेक्ट सिंबल ऑफ योर लव स्टोरी। मीनार ज्वेलर्स, द Diamond Specialists. Call 020-8767-2142.
4: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Deep Raja talks to Hitan Mehta OBE, Chief Executive of British Asian Trust.
5: British Asian Trust, what does the organisation do?
6: The British Asian Trust was started by His Majesty the King when he was Prince of Wales, Prince Charles, to support disadvantaged people right across South Asia. And so far, we've been able to help 18.8.
4: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
7: Hey there, main hoon Bali Brambat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baate, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.

0: 60s 70s का ये वही दौर था जब काका यानी कि राजेश खन्ना साहब की आंधी चल रही थी, मिट्टी को भी छू लेते थे तो सोना बन जाया करती थी। लेकिन हाथी मेरे साथी जिसका निर्माण यानी कि डायरेक्टेड बाय एम ए तिरुमुगम साहब ने की थी और सलीम जावेद साहब के कहने पर ये फिल्म साइन की थी काका ने, क्योंकि उस वक्त उन्हें पैसों की ज़रूरत थी और जुबली कुमार यानी कि राजेंद्र कुमार साहब के बंगलो जो कि मुंबई के कार्टर रोड पर स्थित है जिसका नाम आशीर्वाद बाद में काका ने रखा, उसे खरीदना चाहते थे। उसके लिए उसके पैसों की ज़रूरत थी और उसके चलते काका का दौर चल रहा था। लेकिन इस तरह की फिल्में साइन करना बड़े जोखिम की बात थी, लेकिन जोखिम उठाया और पैसे भी मिले, आशीर्वाद बंगला भी आया और फिल्म भी रही ब्लॉकबस्टर। ये गाना हम तक पहुँचाया है रमानी शंकरन, दिव्या जी और सरफून जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 130.54 पाकिस्तानी रुपीस 378.86, श्रीलंकन रुपीस 449.4, बांग्लादेशी टका 166.88, अफगान अफगानी 88.30 एंड 1 US डॉलर 1.36.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £108.55 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: मीना शाह जी और कल्पना जी को की तरफ से ये गीत हम तक पहुंचाया गया है, साथ ही फिल्म का लता जी की खूबसूरत आवाज में। और अगला गीत ब्रेक के बाद आ रहा है आशा ताई और रफी साहब की आवाज में, विंटेज गोल्ड वाला गाना, नया दौर है लेकिन इस फिल्म का नाम। और हम तक ये गीत पहुंचाया है अर्जुन साहब और संतोष जी ने। सुनते रहे सुपर संडे वाली महफिल।
1: ये है
2: लाइका गोल्ड,
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंडन पड़ रंगा से। स्टार्टअप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा।
5: छोटी छोटी गैया छोटी
4: भक्ति नासुर गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: खयाम साहब का खूबसूरत संगीत और उस पर कहड़ा थी किशोरदा और लता जी की आवाज। फिल्म का नाम थोड़ी सी बेवफाई। और उससे पहले हमने आपको साजन फिल्म का सुपरहिट गाना सुनाया सानुदा और अलका याग्निक जी की आवाजों में। और अब वक्त आ चुका है दिल की बत्ती जलाने का। जी हाँ, हम आपको देंगे तीन ऑप्शंस गानों की, जिनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है और उसे वोट की तरह कास्ट करना है। और जिस गाने वाले ऑप्शन को लेकर सबसे ज़्यादा वोट्स हमें रिसीव होंगे आज के दिन, वो गाना बनेगा आज का गोल्डन राग भारी मतों के साथ। तो भाई देर किस बात की, जल्दी से बताते हैं आपको आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। तो ध्यान से सुनिए। ऑप्शन ए है तौबा ये मतवाली चाल, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम। ऑप्शन बी है आ लग जा गले दिलरुबा, फिल्म का नाम है 10 लाख। और ऑप्शन सी है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, फिल्म का नाम है ताजमहल। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस। ऑप्शन ए है तौबा ये मतवाली चाल, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम। ऑप्शन बी आ लग जा गले दिलरुबा, फिल्म का नाम है 10 लाख। और ऑप्शन सी है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, फ्रॉम द फिल्म ताजमहल। वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दें। अगला गीत हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक साहिर लुधियानवी जी की लेखनी से सजा हुआ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले आपको मिल रहे हैं 130 रुपीज। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
4: साउथहॉल ट्रेवल at all protected.
5: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carry and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
9: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स your travel mantra.
10: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
11: Dreaming of paradise?
12: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
11: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
12: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
11: At all protected.
13: Honslow, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास.
14: बीकानेर वाला परंपरा भी.
15: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्स्लो, TW3 1QT. कॉल करें 07487-687-885.
16: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
17: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
18: Four beers, please, garçon!
17: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
19: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
20: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: नीले पर्वतों की धारा, आशा ताई और महेंद्र कपूर साहब की आवाज, आदमी और इंसान। ये गाना हमने इसलिए आपको सुनाया है क्योंकि हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक साहिर लुधियानवी साहब ने इस गाने के बोल लिखे थे। और एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ आज के गोल्डन रॉक के तीन ऑप्शंस। ऑप्शन ए तौबा ये मतवाली चाल, फिल्म का नाम पत्थर के सनम। ऑप्शन बी आ लग जा गले दिलरुबा, फिल्म का नाम है 10 लाख। और ऑप्शन सी है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, आपको भी निभाना पड़ेगा, फ्रॉम द फिल्म ताजमहल। अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू रखें, जारी रखें, क्योंकि अभी तक वोटिंग लाइन्स हैं ओपन। कहीं भी दूर मत निकल जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Bhai ek nahi, do nahi, teen teen us daur ke suru ke diggaj legends. Dusra aadmi film ka geet sun rahe the Lata ji, Kishore da aur Rafi saab ki awazon mein. याद रखें, वोटिंग लाइन अभी तक ओपन है. अपने वोट कास्ट करते रहें और अपने ऑप्शन को भारी मतों के साथ विजयी बनाएं.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
2: लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन. डिटेल्स एट laikaradio.com.
0: दिस इज लाइका गोल्ड, अ पार्ट ऑफ द नंबर वन एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्किंग ग्रेटर लंदन. द लाइका ग्रुप ऑन राग विद गोल्डन राग.

0: लता जी और रफी साहब की आवाज में धीरे धीरे चल लव मैरिज फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, विंटेज गोल्ड वाला ये गीत, और धीरे धीरे चलते चलते हम शो के आखिरी पड़ाव तक पहुंच रहे हैं और ब्रेक के बाद हम मिल रहे हैं। मुकेश साहब की आवाज में बड़ा ही प्यारा सा गीत सुनाएंगे। जिंदगी का फलसफा आपको इस गीत को सुनने के बाद समझ में आएगा। कई बार किसी ने सही कहा है कि जरूरत और जरूरी में बहुत बड़ा फर्क होता है। कई बार हमारी ज़रूरत होती है लेकिन हम ज़रूरी नहीं होते, लेकिन आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कहीं मत जाइए। छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मिल रहे हैं।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. ये है Like a Gold
2: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: पल भर के लिए
5: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज। इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा। गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर। टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25। बुक टिकट्स एट heroartcenter.com। बॉक्स ऑफिस का नंबर है 0203-773-7161। Exclusive Radio Partners Leica Radio Network.
6: Shri Ram Mandir King Street South Hall invite you to the Shri Krishna Janmashtami Parv. Param Pujya Mahamandaleshwar Swami Gyanananda Ji ke pavan sanidhya mein 30 August Ravivar ko 26th Shobha Yatra subah 11:30 baje se Shri Ram Mandir se aarambh hogi, jisme pujan, darshan, bhajan, kirtan aur preeti bhojan. Iske atirikt 4 September ko sham 8 baje se bhavya celebration at the Shri Ram Temple 22 King Street South Hall. Aap aaiye aur sabko laiye.
7: Celebrate Krishna Janmashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 PM to 8 PM at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
8: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
9: लोकेशन लोकेशन लोकेशन, इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियल, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउन हाउस and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com।
12: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
12: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
13: Rich, authentic taste every single time.
12: Royal Chai, brewed for business.
13: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
14: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of August and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208-951-0111.
15: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears. give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Making summer feel better on the Leica Radio Network.

0: कमाल का ये गीत मुकेश साहब की आवाज, रास्ते का पत्थर। और इसी के साथ आपको बता रहा हूं कि भाई वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं आज के लिए बंद, चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। देखते हैं क्या सरप्राइज दिया आप दोनों ने, आप दोनों ने माफ कीजिएगा, आप लोगों ने एक दूसरे को। सुनते रहे गोल्डन राग संग सुपर संडे वाली महफिल।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 pound के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 130 rupees and 58 paise, पाकिस्तानी रुपीस 378.68, श्रीलंकन रुपीस 449.54, बांग्लादेशी टका 166.94, अफगान अफगानी 88.68 एंड 1 US डॉलर 1.36.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £108.55 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: ये है लाइका गोल्ड।
5: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।

0: भाई हमने तो अपना वादा निभा दिया है, आपका चुना हुआ ये गीत हमने सुना दिया है। रफी साहब और लता जी की आवाज़ में ताज महल फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत रोशन साहब के संगीत से सजा और साहिर लुधियानवी साहब ने गाने के बोल लिखे और रफी साहब लता जी के क्या कहने सूरज को दिया दिखाने जैसा। जल्दी से लेते हैं नाम। संतोष जी सबसे पहला नाम, के भामरा साहब, अमित पटेल, उल्ला जी, रानी सुनाहे, सईद इकबाल, निर्मल किरीट, मनोहर जी, विजय गोदोरे, अयूब चौहान, किशोर लाडवा, माला जी, जगदीश जी, सुमित चौरसिया, पंकज वर्मा, अमिताभ, विनोद, सालिम अख्तर, सुमन, प्रीति, भारती, अंजना, मिसेज इकबाल बेगम, चंपा, मिसेज सुदेश टेकेयर एंड अर्जन साहब, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इतनी इंगेजमेंट बढ़ाए रखने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। नेक्स्ट आ रही हैं सरिता जी, प्यारे प्यारे से गीत आपको सुनाने के लिए। कहीं मत जाइए, सुनते रहें लाइका रेडियो नेटवर्क। होगी आपसे अगले वीक मुलाकात। टेक केयर, बाय बाय।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
4: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
5: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
6: Govind bolo Hari Gopal.
7: Krishna Janmano Anandutsav. Ekaj Raat Ekaj Anubhav.
8: Nand ghera nand bhayo jay kare.
5: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or stardommedialtd.com.
7: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner Laika Radio Network.
9: Two businesses.
10: Same town.
9: Same service.
10: One appears on page one of Google.
9: The other doesn't.
10: Guess which one gets the customer?
9: The truth is brutal.
10: The first page of Google gets the business.
9: Everyone else gets what's left.
10: So here's the real question.
9: When your customers search for what you sell, do they find you?
10: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
9: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
11: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं। और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन। अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
12: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन। लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
13: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
14: Nook Jhook, secrets, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें। दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार। सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी, जहां है खाखरा, नमकीन, भाखरी, चिक्की, सोन पापड़ी, पिकल्स और बहुत कुछ।
15: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू। जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।
16: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
1: Next, Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Like a Gold.
17: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, ब्यूटीफुल गाने, और दोनों गीतों में एक आवाज़ शामिल थी और वो आवाज़ के की। सिनेमा इंडिया एंड सिनेमा म्यूजिक रूम रिमेंबर्स के टुडे। के गेव अ जनरेशन इट्स सॉन्ग्स ऑफ फ्रेंडशिप, फर्स्ट लव, हार्ट ब्रेक एंड सॉलिट्यूड विद वॉइस दैट फेल्ट इंटीमेट इवन व्हेन हर्ड बाय मिलियंस। नाम कृष्ण कुमार कानत, प्लेबैक सिंगर रहे, इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट रहे, हिंदी सिनेमा और इंडियन म्यूजिक उन्हें आज याद कर रहा है। वन ऑफ द डिफाइनिंग प्लेबैक वॉइसेस ऑफ हिज जनरेशन, और आज उनकी 58th बर्थ एनिवर्सरी पर 23rd of August 1968 में उनका जन्म हुआ था, और बहुत जल्द 31 मई 2022 में उनका देहांत। Popularly known as KK was an Indian playback singer. KK is regarded as one of the most prolific playback singer in India, noted for his versatility in a variety of music genre, and he recorded songs in Hindi, Telugu, Tamil, Kannad, Malayalam language and bahut si dusri languages mein bhi. KK was a recipient of several awards, and including 2 Screen Awards along with 6 Filmfare Awards nominations. After beginning with the advertising jingle, you know, jingles mein gaya karte the, KK merged nationally with his 1999 album called पल यारो, उनका गाना बड़ा मशहूर हुआ था, एंड बिकेम एंड्योर एंथम ऑफ फ्रेंडशिप, फेयरवेल एंड मेमोरी। तड़प तड़प के इस दिल, ये आपने गीत सुना, दिल दे चुके हम, दिल दे चुके सनम ने में गाया था उन्होंने, एंड ही वेंट ऑन टू क्रिएट मेमोरेबल सॉन्ग्स इंक्लूडिंग आँखों में तेरी, क्या मुझे प्यार है, ज़रा सा, खुदा जाने, दिल इबादत कर रहा है, तू ही मेरी शब है, कोई कहे कहता रहे, फ्रॉम दिल चाहता है, ओ हमदम सुनियो रे साथिया, काश ही गाने में आज के प्रोग्राम में शामिल कर पाती। डोला रे डोला देवदास का गाना, 10 बहाने करके ले गए दिल, क्या मुझे प्यार है, वो लम्हे का गीत, तू ही मेरी शब है, देन खुदा जाने, बचना या हसीना इस फिल्म का गीत, एंड ज़रा सा जन्नत फिल्म का गाना था, सजदे वॉज अनदर ब्यूटिफुल सॉन्ग खट्टा मीठा से, एंड पिया आए ना आशिकी टू का गाना, ऐसे बहुत से यादगार गीत हैं। पर आज के प्रोग्राम में मैंने 2 गीत उनके गाए हुए मैंने शामिल किए, और उम्मीद करती हूँ कि आपने इन दोनों गीतों को पसंद किया। ही डाइड वेरी अनएक्सपेक्टेडली ऑन 31st of May 2022 आफ्टर परफॉर्मिंग एट अ कॉन्सर्ट इन कोलकाता, एंड द सॉन्ग I were never really left. इनके गीत हम हमेशा सुनते रहेंगे और इसी तरह से याद करते रहेंगे। ये थी छोटी सी श्रद्धांजलि केके के लिए, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर थे, एंड मुझे भी उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। इनफैक्ट एक दफ़ा मेरा मिलना हुआ था, मैंने इन्हें इंटरव्यू नहीं किया था, लेकिन मिलना ज़रूर हुआ था व्हेन ही केम टू आवर टेलीविजन स्टूडियो एंड विद सुनिधि चौहान, और इनका लाइव कॉन्सर्ट था, उसके दौरान ये दोनों आए थे और इनसे मुलाकात हुई। वेरी प्लेसेंट बॉय। चलिए, ज़िंदगी ऐसी है, जीवन आना जाना है या हर कोई आता जाता है, अगर जाए ना आने वाला तो प्यार समझ कर पाता है। अब आपसे पूछ लें, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जियो शान से, मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए। गाने तो चुन चुन कर लाई हूँ मैं, उम्मीद करती हूँ कि मेरी पसंद आपकी पसंद बनेगी। आइए, जिन मेरे साथियों ने ऑलरेडी मैसेजेस भेज दिए हैं, तहदिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, एंड वेलकम।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 130 rupees in Indian currency. And don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
4: Watford में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफोर्ड. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे. लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
8: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
9: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. Indian Idol fame Sugandha Date live in concert. Sunday the 6th of September at Damesha Lohana Center, London. Apni seats abhi book kijiye. For more information call Ashwin on 07956 278228. Exclusive radio partner Leica Radio Network.

0: another beautiful song from the film Amrapali. देखी थी फिल्म विजयंती माला पर ये गाना पिक्चराइज हुआ और इनफैक्ट मधुमती का गाना भी उन्हीं पर पिक्चराइज हुआ था. व्हाट अ कोइंसिडेंस. वैसे उनकी फिल्मों के सारे गाने नहीं हैं.
1: तड़प ये दिन रात की कसम.

0: भाई बिल्कुल ठीक आपने पहचाना है, तड़प इज द वर्ड जो हर गीत में सुनने को मिल रहा है। थैंक यू एवर सो मच फॉर योर लवली लवली मैसेजेस, और हर गाना आपके दिल के करीब है ये जानकर और भी अच्छा लगता है। जहाँ भी बैठे आप सुन रहे हैं, बता दूं कि नेक्स्ट आवर में सायरा बानू जी को भी हम याद कर रहे हैं उनके बर्थडे पर। तो कुछ एक गाने अपनी पसंद के आप मुझे भेजना चाहें तो जरूर भेजिएगा।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 130 rupees and 56 paisa, Pakistani rupees 378.69, Sri Lankan rupee 449.52, Bangladeshi taka 166.92, Afghani 88.92, US dollars 1.36.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: It's £108.55 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Like a gold.
1: Birmingham, we are coming. September 1st, Leica Radio Birmingham.

0: 1965 की फिल्म थी जिसका नाम था पूनम की रात, वन रेयर हिट ऑफ मोहम्मद रफी साहब। उम्मीद करती हूँ आपके दिल को भी भाया होगा।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड, आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत। Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Call 0208 574 8410, 0208 574 8410. Southall Travel, at all protected. Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
2: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: Shri Ram Mandir, King Street, South Hall, invite you to the Shri Krishna Janmashtami Parv. Param Pujya Mahamandaleshwar Swami Gyanananda Ji ke Pavan Sanidhya mein 30 August Ravivar ko 26vi Shobha Yatra subah 11:30 baje se Shri Ram Mandir se aarambh hogi, jisme pujan, darshan, bhajan, kirtan aur priti bhojan. Iske atirikt 4 September ko sham 8 baje se bhavya celebration at the Shri Ram Temple, 22 King Street, South Hall. Aap aaiye aur sabko laiye.
4: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com।
5: लोकेशन लोकेशन लोकेशन। इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
6: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई एप्रिसिएशन।
5: फुल्ली फर्निश्ड Townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: 0730099823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823।
8: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208767 7627।
9: सप्टेम्बर महीना मा हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
10: तमे बधा पुरुष हो तो लग्ने लग्ने कुंवारा हो छो।
11: ए तमे स्त्रीओ अमने छे ने पुरुषो ने खोटा ओगवानो बंद करो।
9: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा। हवे राइसली, पॉटर्समार, इलफर्ड, साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकिट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 0793153427 0। नाटक नु नाम याद राखजो,
12: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
13: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
12: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
1: 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
14: Sharma ke na ja.

What a beautiful song sung by मोहम्मद रफ़ी साहब. फिल्म का नाम था शहनाई जो 1964 में आई थी. उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया इस गीत को. वैसे आपके मैसेजेस की बौछार आ रही है, मुझ तक पहुँच रही है. अगला गीत भी बहुत प्यारा है. This is life.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और दोनों ही गीत बड़े ज़बरदस्त थे। ये गीत मैंने फिल्म डांसर से चुना था, डांसर जिसे डायरेक्ट किया था किशोर व्यास ने, एंड इस फिल्म में काम किया था अक्षय कुमार ने और साथ में थी एक ब्रांड न्यू हीरोइन जिनका नाम था मोहिनी, उन पर यह गाना पिक्चराइज हुआ था। दिलीप ताहिल ने भी इस फिल्म में काम किया था एंड संगीत तैयार किया था किसने इस फिल्म का, आनंद मिलन ने। और मैंने आज के प्रोग्राम में क्यों शामिल किया ये भी बता दूं, इसलिए शामिल किया क्योंकि ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी इन 1991 में। वैसे तो एक गाना 1990s का होता है और एक 80s का गाना होता है, क्योंकि ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी इसलिए मैंने आज इस गीत को प्रोग्राम में जगह दी और उम्मीद करती हूँ आपने पसंद भी किया। और पहला गीत था इस आवर का फिल्म जीत से, और कल भी मैंने जीत का एक गीत आप तक पहुँचाया था और मैंने कहा था आई एम गोइंग टू प्ले अनदर सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म जीत, और उसका रीज़न ये है कि ये फिल्म भी आज ही के दिन इन 1996 में रिलीज़ हुई थी। राज कंवर साहब ने बनाई थी ये फिल्म, उन्होंने डायरेक्ट की थी, स्टोरी भी उन्हीं की थी एंड स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा था। साजिद नाडियावाला ने इसे प्रोड्यूस किया था। सनी देओल, सलमान खान, करिश्मा कपूर, तब्बू, अमरीश पुरी ने इस फिल्म में काम किया था। संगीत कार थे नदीम श्रवण की जोड़ी और समीर जी ने लिखे थे इस फिल्म के गीत, और सारे के सारे गाने मुझे इस फिल्म के बहुत अच्छे लगते हैं। एक गीत आपने सुना तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी एंड यारा ओ यारा वो जनदा गीत, दिन सांसों का चलना मैंने कल प्ले किया था आपके लिए, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है वो भी गाना बड़ा ज़बरदस्त, एंड दिल का क्या करें साहेब एंड साजन घराना वो भी गाना बहुत अच्छा था। सो बारी बारी सारे गाने मैं प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगी। और प्रोग्राम के इस आवर के बाकी के जो गाने हम सायरा बानो जी के नाम करते हैं जो आज अपना जन्मदिवस मना रही हैं, एंड 23 अगस्त 1944 में उनका जन्म हुआ था। अब भाई मेरे वो साथी जो बड़े प्यार से मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं और अपनी अपनी फरमाइशें भी लिख रहे हैं कि हमें सायरा जी की इस फिल्म का गीत सुना दें, तो तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवाय, इसकी फरमाइश बहुत आई है, लेकिन ये गाना 20 तारीख को हमारे यहाँ से आपने सुना, आज सिर्फ 3 दिन हुए हैं, हमारी पॉलिसी तो आपको पता ही है, तो आज के प्रोग्राम में वो गाना मैं शामिल नहीं कर पाऊंगी। बाकी जो भी गीत मैंने चुने हैं आप पसंद जरूर करेंगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: चलिए भी अगर इनके ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो आज आपका 1 ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जो है वो आपको दे सकता है 130 रुपीज़। आप एक्सचेंज कर सकते हैं जाके ब्रांच में, ऑनलाइन या SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Oh, how relaxing was that yoga session? I feel so free.
3: Speak for yourself. I can never let go. Bladder leaks.
2: I know, right? I'm so done compromising. I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
3: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
2: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
3: Let's just say I found my flow.
2: Always discreet. Live with no compromise.
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम, पंकज सोठा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक,
6: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा,
5: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ, 29th August हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th August वुडमिंस्टर्न स्कूल साउथ लंदन, डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM, फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
7: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
8: Govind bolo Hari Gopal.
9: Krishna Janmano Anand Utsav. Ekaj Raat Ekaj Anubhav.
10: Nand Gharanand Bhayo Jai Kare.
7: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or stardommedialtd.com.
9: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner Laika Radio Network.
11: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
12: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
11: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
12: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
11: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
12: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
11: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
12: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
13: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
14: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
15: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
16: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 hour line.
17: Deirdre, look, it's the bottom Liz this time, sliding across their car bonnet.
18: Leave them be, Philip. They just claim confident.
17: Claim confident?
18: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
17: Deirdre? Deirdre? Come back here.
19: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
20: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
21: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: साइरा बानो 23 अगस्त 1944 में मैसूरी में इनका जन्म हुआ था टू एक्ट्रेस नसीम बानो एंड प्रोड्यूसर मियां एहसानुल हक। और आज अपना बर्थडे मना रही है, हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। बहुत कुछ कहना है लेकिन क्या करें।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और भाई यहाँ मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन है प्रोग्राम में। यस, कल भी दो टिकटें जीती थी किसने जीती थी, हर्षद लैड आई थिंक। और आज कौन जीतता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन तैयार हो जाइए।

0: इन टू विन। सो जल्दी से लिखकर भेजिए गजल्स, GHAZALS गजल्स लिखकर भेजना है आपने। विनर टिकट्स कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम द बॉक्स ऑफिस ऑन द इवनिंग ऑफ द शो एंड योर नेम एंड नंबर विल बी यूज फॉर योर ID पर्पस। सो अपना प्लीज़ ID भी साथ में लेकर जाइएगा एंड ऑल्सो मुझे आप जब एंट्री दें अपनी तो अपनी ईमेल ID भेज दीजिएगा एंड साथ में अपना एड्रेस भी एंड फ़ोन नंबर तो भेजेंगे। इफ़ यू डोंट विन यू कैन स्टिल बाय द टिकट्स फ्रॉम क्वींस queens-theatre.co.uk से। डोंट फॉरगेट द UK's फर्स्ट गजल रेडियो स्टेशन लाइक अ रेडियो गजल्स लॉन्च सून। सो उसका भी इंतज़ार कीजिए और कॉम्पिटिशन में विन करने का भी इंतज़ार कीजिए। और अगर टिकट बाय करनी है तो queens-theatre.co.uk पर जाकर टिकटें बुक करें।
1: सरिता सबरवाल, द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइक अ गर्ल।
0: हाँ जी, यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ साझा करनी है और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ आने वाला है नियर फ्यूचर में। आतिफ असलम रिटर्न्स टू द UK फॉर अ स्पेशल वन ऑफ कॉन्सर्ट एट AO अरीना मैनचेस्टर ऑन फ्राइडे 11 सितंबर को। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है? लाइक अ रेडियो। और राग Like a Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at likearadio.com.
1: Listen wherever you are by downloading the Like a Radio mobile app now. Sarita Sabarwal, the biggest classics on Like a Gold.
0: जी हाँ, ये गीत मैंने चुना है from the film Zameer. इस फिल्म में भी हीरोइन थी कौन? Saira Banu, जो आज अपना बर्थडे मना रही है।

0: विजी गुजरे जी कहते हैं ये चिंतन का गाना है. यस यस, कुछ गाने ऐसे होते हैं. वेल, इस गीत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. गुरदीप जी, आप भी प्रोग्राम सुन रहे हो और आपने लिखा है कि प्लीज़ डेडिकेट वन सॉन्ग टू माय फ्रेंड एंड हिज नेम इज़ दाऊद पाकर. दाऊद जी, आपका भी स्वागत है. आप नए लिसनर हैं तो मुझे उम्मीद है कि इन्जॉय कर रहे हैं. बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत से लोग मेरे साथियों ने कंपटीशन में भी हिस्सा लिया है. सो देखते हैं कुछ ही देर में कि कौन विनर बनता है आज के प्रोग्राम में. अब जरा ये भी सुन लें. Like extra podcast updates. राइट, अपडेट ये है कि इस हफ्ते का जो एपिसोड है वो 30th एपिसोड है और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट शोकेस है, होस्टेड बाय दीप राजा. एंड दीप राजा स्पीक्स टू हितेन मेहता OBE, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वर्क. सो अगर आपने अभी तक कोई भी एपिसोड नहीं देखा है तो देर मत कीजिएगा. आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट पर बहुत सारे एपिसोड देख पाएंगे, अवेलेबल ऑन Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms. Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: Need anything from Tesco? How about winning one of 40 family holidays to the Med plus €500 travel money? To enter, simply spend £25 or more with your club card to qualify. Now that's something worth checking in for. Tesco, every little helps. UK and Isle of Man 18 plus only, club card required, T's and C's travel restrictions and exclusions apply.
2: Ye hai. Leica Gold TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHub.com.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
5: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203-773-6333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा Holidays. What's your travel mantra?
6: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
7: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
7: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 0192-322-7274. बुक योर टेबल टुडे. लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं.
8: Dad, Dad, Dad!
9: What's wrong, beta?
8: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
9: I will run down to the money exchange now.
8: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
9: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
8: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
10: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
11: Ilford, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
12: बीकानेर वाला
11: परंपरा भी।
12: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, एल्फोर्ट, IG26HA। कॉल 07555-506015।
13: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
14: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
13: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।

0: तो फिर क्या होगा, आओ प्यार करें। इस फिल्म से चुना हुआ गीत आपने सुना। इस फिल्म में सारा बानो का साथ दिया था जय मुखर्जी ने एंड संगीतकार थी उषा खन्ना। बहुत प्यारा गीत रजिंद्र किशन साहब ने लिखा था। और सायरा बानो जी की कुछ एक फिल्मों के गीत मैं आप तक पहुंचा रही हूं। इनका फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी फिल्म जंगली से, 1961 की फिल्म थी जिसमें उन्होंने शमी कपूर के साथ पेयर किया था। ये फिल्म उनकी पहली बड़ी हिट थी एंड शी रिसीव फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन। शी रिसीव 3 मोर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन फॉर शागिर्द इन 67, दीवाना इन 67 एंड सगीना इन 1974. She went on to be part of many successful films such as Bluff Master, I Milan Ki Bela, Padosan, Victoria 203, Hera Pheri, Gopi, aisi bahut sari filmein. And then Saira Banu ne apni filmi career ke dauran hi Dilip saab se shaadi kar li thi aur dono ko pyar aur shaadi ke bahut charche hue the kyunki unki aish mein kafi antar tha. Anyway, Saira ji ko aaj ka din bahut bahut mubarak.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you at this minute 130 rupees and 57 paisa. Pakistani rupees 378.63, Sri Lankan rupee 449.46, Bangladeshi taka 166.83 and Afghani is 88.90. And US dollars 1.36.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: It's £108.55 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: सरीचे सबवा
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: सितंबर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे। ઇલફર્ડ, સાઉથ લંડન અને લ્યુટન માં ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુ ને 07931534270। નાટક નું નામ યાદ રાખજો।
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल
4: Protected। महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा। फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन, फ्लाइट्स, फोर स्टार होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
5: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance with the legendary Anup Chalota।
6: Jaam chalne lage, dil machalne lage।
5: On Sunday 30th August at Queen's Theatre, Romford, doors open 5 PM, show starts 6 PM, hosted by Anisa Nasir। Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se। Book now at queens-theatre.co.uk। Radio partners like our radio network।
4: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
5: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
5: high appreciation,
7: in Dubai.
8: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
9: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
8: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
10: ब्रांड्स दैट यूज रेडियो आर 49% मोर लाइकली टू गेट नोटिस्ड। एम्प्लीफाई योर एडवर्टाइजिंग एट radiocentre.org। Assuming you want to get noticed.
0: Sarita Sabawal.
11: London, Midlands, Manchester. This is the Leica Radio Network.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत मैंने दाग द फायर से चुना था, ब्यूटीफुल सॉन्ग जसपिंदर नरूला एंड सुखविंदर सिंह की आवाज़ है। और दूसरे गीत में किशोरदा की आवाज़ सुनी आपने, राजेश रोशन जी का संगीत, फिल्म का नाम था याराना, 1981 की फिल्म। दोनों गीत सुनकर आप झूम रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं और आप मुझे प्यारे प्यारे मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं, जिसके लिए तहे दिल से सरिता हमेशा आप सबकी शुक्रगुजार होती है। तो बस इस आवर में भी मिले जुले गाने हैं, लेकिन मैं जब घर थी तो मैं सोच रही थी कि हम लोग आजकल सोशल मीडिया पर इतने सारी रील्स देखते हैं, देखते होंगे आप भी, ज़रूर देखते होंगे, मैं भी देखती हूँ, जिन्हें हम अवॉइड कर ही नहीं सकते अगर हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी सारी रील्स आती हैं और स्पेशली आजकल छोटे छोटे बच्चों की बहुत आ रही हैं, छोटे छोटे जोक्स हैं, फिर कुकरी की इतनी ज़्यादा आती हैं कि देन हेल्थ कॉन्शियस, मतलब हेल्थ की भी बहुत सारी आती हैं, आपको यहाँ पेन है तो ये कीजिएगा वो कीजिए, एंड खाना बनाने के लिए कितनी अलग अलग तरह की रेसिपीज़ आती हैं। क्या मुझे बताएंगे कितनी चीज़ें आपको याद रहती हैं? क्या आप कभी अपनी कुकिंग को छोड़कर वो फॉलो करते हैं, सोचते हैं कि हाँ मैं बनाऊँगी, फिर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा सोचती हूँ कि इतनी सारी रील्स होती हैं, इतने सारे मैसेजेस होते हैं आजकल, तो क्या आप सबको सुनते हैं? स्पेशली छोटे छोटे बच्चों के जोक्स आ रहे हैं आजकल, वो एआई क्या है, एंड वो बहुत अच्छे भी लिखते हैं, लेकिन साथ ही मैं सोचती हूँ ओ माय गॉड, इसमें से कौन कौन से याद रखो, किसे हम भूल पाएँ? तो मुझे बताइएगा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इफ़ यू हैव जस्ट जॉइन मी, वेलकम, लेकिन आप देर से आए हैं, नेक्स्ट सैटरडे से प्लीज़ 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मेरा साथ दीजिए। 7 बजे के बाद आ रहे हैं सैंडी शाह। सैंडी आपके लिए विंटेज गोल्ड में पुराने इतने खूबसूरत गीत लेकर आते हैं, जिनके साथ तो पता नहीं कितनी यादें आपकी जुड़ी होंगी, बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट, भी अगर SBI के ज़रिए पैसे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो 1 British sterling pound कैन गेट यू टुडे 100 and up to 130 rupees। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के ज़रिए। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At AJ Bell, we believe investing is for everyone. Even people who know nothing about investing. Like Keith, who thought dividends were a boy band. Jessica, who thought compound interest was a prison dating app. And Sue thought FTSE 100 was a bit of under-the-table fun, which surprised her accountant.
3: Oh, no.
2: If we can make investing feel good for them, it's no wonder which have recommended us 8 years running. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: क्या बात है, क्या बात है। मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ गीत और कलम का कमाल था साहिर साहब का। साहिर साहब का लिखा गीत आपने सुना, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया है। ही इज़ द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। अभी तो मैंने बताना है कि अनूप जलोटा जी का शो फ्री में देखने कौन जा रहे हैं। बस कहीं नहीं जाने का, अभी थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए।
1: Good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: एक और गाना मुकेश जी की ही आवाज़ में फ्रॉम द फिल्म ब्लफ मास्टर। और इस फिल्म में तो सायरा बानू भी थी, जो आज अपना बर्थडे मना रही है।

0: स्टाइल भी वैसे ही बनाती हूँ। क्या बात है भाई, बहुत बहुत काम की चीज़ है जो ये रील्स बनाकर भेजते हैं और आप उन्हें फॉलो भी करते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: रफी साहब की आवाज में गाया हुआ फ्रॉम द फिल्म आज और कल से चुना गीत।

0: और बता दूं कि ये गाना भी लिखा था साहिर साहब ने ही, और बहुत दिनों से मैं सोची थी इस गीत के बारे में और आज के प्रोग्राम में इस गीत ने जगह ली ही ली। अब कंपटीशन की बात भी कर लें। कंपटीशन जो अनूप जलोटा जी का शो देखने जा रहे हैं उसमें आज विनर बनी हैं मिस्टर भावसर। भावसर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का, और आपने सारी डिटेल्स मुझे लिख दी हैं जो हमें चाहिए थी, और आपको टिकट्स वहीं गेट पर ही मिलेंगी, लेकिन अपनी आईडी ले जाना मत भूलिएगा।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ओल्ड ट्रैवल।
0: राइट, साउथ ओल्ड ट्रैवल इज नोन फॉर इट्स competitive holiday deals to Dubai, and contact South Old Travel today on 0208-574-8410. South Old Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit travelhubworld.com.
1: One performer,
4: countless personalities,
1: a whole universe of entertainment.
4: Sunil Grover, live UK tour 2026.
1: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.

0: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
1: Watford में dinner plans, थोड़ा classy, थोड़ा देसी.
2: तो आइए Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
1: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala से biryani तक, fresh bread and refreshing drinks. हर bite में लाजवाब flavors और vibe बिल्कुल premium.
2: Friends, family या special night out, इसे यादगार बनाइए. Visit Vivek House Watford. Call 01923227274. Book your table today.
0: महाराजा टूर्स के साथ नेपाल और भूटान की आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए, अपना सुकून ढूंढिए, हिमालय की खूबसूरत वादियों, प्राचीन मोनेस्ट्रीज, रंग बिरंगी संस्कृति और यादगार अनुभवों का मजा लीजिए. सुकून, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम आपका इंतजार कर रहा है. आज ही महाराजा टूर्स के साथ अपनी नेपाल और भूटान यात्रा बुक कीजिए. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
3: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. अभी कॉल करें 0208150205 और विजिट meraboiler.com. TNC supply.
4: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
5: Honslow, ab India ka favorite swad bilkul aapke paas.
6: Bikaner wala parampara bhi.
7: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT. कॉल करें 07487-687-885.
8: sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर 14 डेज टू जापान एंड साउथ कोरिया फॉर चेरी ब्लॉसम्स इन मार्च एंड अप्रैल 2027. बुक बिफोर द एंड ऑफ ऑगस्ट एंड गेट अप टू 400 ऑफ और लूज द डिस्काउंट आफ्टर. कॉल सोनाटूर्स नाउ ऑन 0208-951-0111.
9: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
10: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: मेरे हमदर्द मेरे दोस्त 1968 की फिल्म थी, और इस गीत को शामिल करने की एक वजह ये कि ये फिल्म भी आज ही के दिन 23rd of August 1968 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अमर कुमार जी ने, एंड फिल्म में काम किया था धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, मुमताज़ थी इस फिल्म में, एंड रहमान के साथ साथ ओम प्रकाश जी भी थे। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का खूबसूरत सा संगीत था, और जब लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी के गीतों तो उनका म्यूज़िक हो तो या मजरू साहब ने उनके गीत लिखे या आनंद बख्शी साहब ने। सो इस फिल्म के गाने लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी जी ने। और इसी दौरान मुझे हरप्रीत ने मैसेज लिखा, ओ मैं वैंकूवर में हूँ, इट्स ओनली 10:45, प्लीज़ ना जाओ। हाँ, मैं नहीं जाऊँगी तो सैंडी जो दरवाजे में खड़ी है वो कैसे अंदर आएंगे, हॉट सीट पर बैठेंगे, तो उनका भी इंतज़ार रहता है ना, है ना, होता है ऐसा ही। तो मेरा साथ आप देते हैं। मुझे अभी अभी सादिया जी ने भी मैसेज भेजा और कहती हैं कि मैं भी बहुत सी रील्स देखती हूँ इस तरह से जो आती हैं सोशल मीडिया पर, मैं ज़्यादा फॉलो करती हैं जब वो दिखाते हैं ना कि कपड़े किस तरह से तय करने चाहिए। सो यस, आई दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली, लगता है बहुत ईजी है, मैं कर लूँगी, कहती मैं बहुत दफ़ा देखती हूँ और पर वैसे तय नहीं होते जैसे कि वो एकदम फोल्ड करते हैं और इतने खूबसूरत कपड़े इतनी अच्छी तरह से तय करके स्टैक कर देते हैं। सो ये सोशल मीडिया पे जो डालते हैं हेयर स्टाइल रेसिपीज़ एंड हेल्थ टिप्स देते हैं, तो जो भी आप ट्राई करते हैं क्या उससे आपको फ़ायदा होता है, इसके बारे में मैंने आपको पूछा था और आपने मुझे बड़े सारे जवाब भी दिए हैं, जिसके लिए तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। जैस्मीन भारती जी, पाके चियांग आपका भी, संध्या जी, फरजाना जी, हरीश रुड्डा जी, बहुत सारे मैसेजेस थे, विजय गुदरे एंड जो, दीपक वोरा जी, अर्जन जी, निर्मल एंड कीरत जी, संतोषी नेहरो, हंसा वोरा जी, अरुणा जी, दीपेश, दिनेश पोपट जी, भरत गंगाराम जी, रानी ऑफ स्लो, तोची जी, महेंद्र पटेल, मिसेस शेख, सुदेश टक्यार, करसान पिंडोरिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रानी दत्ता, बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगी लेकिन मैंने सबको जवाब ज़रूर दिया है व्हाट्सएप पर। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, मेरी अगली मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट सैटरडे, और मेरे बाद यहाँ आ रहे हैं सैंडी शाह, लेकिन मैनचेस्टर रेडियो पर आप सुन पाएंगे जेजी जीको, और दूसरी तरफ लाइका रेडियो पर आ रहे हैं नीरज। बाय फॉर नाउ।
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: 07300998823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
3: श्री राम मंदिर किंग स्ट्रीट साउथ हॉल इनवाइट यू टू द श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के पावन सानिध्य में 30 अगस्त रविवार को 26वीं शोभा यात्रा सुबह 11:30 बजे से श्री राम मंदिर से आरंभ होगी, जिसमें पूजन, दर्शन, भजन, कीर्तन और प्रीति भोजन। इसके अतिरिक्त 4 सितम्बर को शाम 8 बजे से भव्य सेलिब्रेशन एट द श्री राम टेम्पल 22 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल। आप आइए और सबको लाइए।
4: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम, पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक।
5: तुम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
4: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th August हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th August वुडमेंस्टर्न स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
6: Dad, dad, dad.
7: What's wrong, beta?
6: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
7: I will run down to the money exchange now.
6: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
7: Oi, bale, bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
8: Are we there yet?
9: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
10: Relax, I've booked the Uber already.
9: But how? My roaming isn't even working yet.
10: I switched to Simzy before we left London.
9: Simzy? Since when are you the tech expert?
10: Since I decided I want a stress-free holiday.
11: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
12: T's and C's apply.

0: राइट राइट राइट ऑल राइट
1: आवो डियर हम चले तैयार
0: आवो डियर हम चले तैयार वेयर

सच अ लवली फील गुड सॉन्ग. फिल्म का नाम था पतीता, तलत महमूद की आवाज. थैंक यू फॉर योर मैसेज इन द स्टूडियो बाय द वे एज वेल. Really glad to have them. Now I want to play you a rare song after the messages. Not heard it for a long time. Awaazein hongi Mohammed Rafi Saab aur Lata Mangeshkar ki. Aur mausikaar the C. Ramchandr. Film ka naam Saki. Premnath ki film thi, if I'm not mistaken. Really nice songs. This duet is truly wonderful. Phir uske baad, another rare song.

0: नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Cool music for a super hot summertime on Leica Gold.

0: Certainly hope you've enjoyed almost the first hour of Vintage Gold this Sunday night. Hope the music's been good. Got a few messages and then a couple of songs leading us up straight to the news. But please do stay with me and join me on the second hour of Vintage Gold on Like a Gold. My name is Sandy Shah and it's really nice to have your company.
1: Like a Gold. Vintage Gold on Like a Gold.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
1: साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.
4: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 073-00-99-8823.
5: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
6: तो माने याना माने दिलदारा.
7: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
8: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
9: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
10: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
9: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
10: And you didn't pay those massive roaming charges?
9: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
12: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है.
13: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी.
14: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB. कॉल 07795181001.
15: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम. पंकज सोठा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक.
16: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों.
15: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ. 29th August हेच एंड हाई स्कूल हैरो. 30th August वुडमेंस्टर्न स्कूल साउथ लंदन. डिनर फ्रॉम 5 PM. शो स्टार्ट्स एट 7 PM. फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947-561-947.
1: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. London's biggest classics all day. Leica Gold. Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.

0: Truly wonderful and iconic. I was telling them with Gifum Kanam Tandar. Right, got a few messages coming with Skibald. Got a few songs going up to the news, which I want to let you enjoy in peace. And please don't forget to join me in the third and final hour this weekend of Vintage Gold. And remember, it's only available on Like a Gold. My name is Sandy Shah, and it's really good to have your company. Thank you for your messages. Do keep them coming in.
1: Vintage Gold with Sandy Shah.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
2: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02033736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर Travel Mantra.
4: South of Travel, 7 days a week. South of Travel, 24 hours a day.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there.
7: Southall Travel, at all protected.
8: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
9: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
8: London walo dhyan se सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
11: नोक झोक, सीक्रेट्स, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें. दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार. सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी, जहां है खाखरा, नमकीन, भाखरी, चिक्की, सोन पापड़ी, पिकल्स और बहुत कुछ.
12: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू. जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन.
13: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Like a Gold, London's number one Asian retro music station.

0: Dad.
1: What's wrong, beta?
0: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
1: I will run down to the money exchange now.
0: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the YONO SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
1: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the YONO SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
3: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीएनसी अप्लाई।
4: डिस्कवर द मैजिक ऑफ स्विट्जरलैंड विद मंत्रा हॉलीडेज सीनिक स्विस टूर फ्रॉम द स्टनिंग स्विस आल्प्स टू इंटरलाकन, लुसर्न, माउंट टिटलस एंड मोर। And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.

0: गोल्ड। आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
1: Celebrate Krishna Janmashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
2: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
3: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
5: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स Your travel mantra.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: You know how fans shout at football matches.
10: Oh, wake up!
9: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too, because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
11: Bollywood ke legend kalakar, sirf Leica Gold par.

0: भोले वाले ललुआ बुलु बुलु बुलु बुलु बुलु बुलु बुलु भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। खेल खेल खेल माटी में होली खेल, गाल में गुलाल है न जुल्फों में तेल।
2: अरे अपनी भी जवानी क्या है सुनते है

0: लाइका गोल्ड, अपनों को अपनों के करीब। आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
1: One performer. टीवी के सामने प्रोडक्शन से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया खिलाड़ियों के खिलाड़ी।
2: Countless personalities.
3: जिंदगी बर्बाद हो गया।
4: A whole universe of entertainment.
5: नन्ना फंक्शन रखा हुआ है।
2: Sunil Grover live UK tour 2026.
4: 29th October Ovo Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
4: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
7: Dad,
8: what's wrong, beta?
7: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
8: I will run down to the money exchange now.
7: No, dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
8: Oi, bale bale, I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
9: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
10: Location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com।
13: टीजेंसी सप्लाई। पैक्ड फॉर द ट्रिप? गिफ्ट्स? पासपोर्ट?
14: चेक। जस्ट ड्रेडिंग दैट फोन बिल व्हेन आई गेट बैक फ्रॉम इंडिया। रोमिंग इज अ नाइटमेयर।
13: मेट, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। जस्ट गेट Simzy.
14: Simzy?
13: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
2: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
15: Like a gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.

0: कब नाउ सरप्लस अब है स्टॉप लॉस।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए, लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
3: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: classics.
1: Bringing to you the best classics all night. Like a Gold on 10:35 a.m. Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
2: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
4: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
7: आवाजों में ताकत होती है।